محاسنين.

सुप्रभात, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में हर रोज की तरह पहले आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में ये मातृवंदना। रचना डॉक्टर ललित मोहन की है, संगीत है रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत था रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गणपति वंदना। स्वर उषा मंगेशकर और साथियों के हैं, संगीत है रघुनाथ सेठ का, ये रचना है पारंपरिक।

अभी आप सुन रहे थे ये गणपति वंदना, और आइए आप सुनते हैं ये जैन भजन। रचना है रेखा रावल की, संगीत है कमलेश रूमी का, आवाज है राजेश मिश्रा की।

अर्चना कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक रचना, स्वर है जूठिका रॉय का।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:25 हो चुके हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे महेंद्र कपूर, भूपेंद्र सिंह और साथियों के। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 से। इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है आगामी फसलों के लिए सामयिक सलाह और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एनपी दुबे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 7:10 से। मन चाहे गीत सुनिएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:45 से। सुबह 8 का वक्त होगा समाचार प्रभात का, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 से। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 9 से। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 से। इसे भी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन करें, लोकगीत सुनें। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:05 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 11 से। सुबह 11:30 से एक बार फिर से आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे दोपहर 2 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे दोपहर 2:10 से। दोपहर 2:15 का समय होगा दोपहर समाचार का, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:30 से एक बार फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 से, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम रिले करेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। शाम 6 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सदाबहार गीत सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:45 से। शाम 7 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण के तहत कार्यक्रमों की जानकारी प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 7:10 से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 से। शाम 7:30 से सुनिएगा। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 से।

संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा। रात्रि 8:20 से समाचार संध्या का वक्त होगा रात्रि 8:45 का। रेडी करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन चाहे गीत, सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रेडी किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे से, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। ये दोनों ही समाचार हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर महेंद्र कपूर, भूपेंद्र सिंह और साथियों के हैं। आज आप सुनेंगे 113वां

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्राह्मणों को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे महेंद्र कपूर, भूपेंद्र सिंह और साथियों के, और आज आप सुन रहे थे इसका 113वां भाग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:40 हो चुके हैं, सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीतकार मदन मोहन, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अदालत।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: संदेश के बाद भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं छबीली फिल्म का गीत नूतन की आवाज में, बोल है एस रतन के, संगीत है स्नेहल भाटकर का।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश के बाद भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुन पाते हैं गेस्ट हाउस। इस फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल है प्रेम धवन के संगीत है चित्रगुप्त का।

इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अभी संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बज चुके हैं। पेश कार्यक्रम सुबह सुबह।

सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारी ठोस शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद जब हम मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो जो हमारे मन के करीब होती हैं चीजें, जिससे हमारे मन को सुकून मिलता है, ऐसे काम वही हमारे जीवन को सही मायनों में संतुलित बनाते हैं और बेहतर जीवन की तलाश को पूरा करते हैं, हमारी मानसिक जरूरतों को पूरा करते हैं। और हमारे मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे शौक, हमारी रुचियां अहम भूमिका निभाती हैं। वो हमारे जीवन के उबाऊ ढर्रे और एक रास्ता से निजात दिलाते हैं। और अगर हम गौर से सारे समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो हमारे जीवन की खास और बड़ी सफलताएं इन्हीं रुचियों से जुड़ी होती हैं। और अगर इस दिलचस्प संसार की इतनी सारी विविधताओं को देखें तो ढेर सारे तरह तरह के काम, बहुत सारे क्षेत्र और उनसे जुड़े हुए लोग और अपनी अपनी धुन में अपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी प्रयास में देखें तो जीवन का आनंद है, एक बहाना है जीने का। दरअसल जिस काम में हमारी रुचि होती है, जिस काम को हम प्यार करते हैं, वास्तव में हमारा ध्यान भी ना चाहते हुए भी उस ओर लगा रहता है और हम तमाम बाधाओं के बाद भी उस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दिल इच्छा की वजह से हमें कई कई मुश्किलें मुश्किल नहीं लगती और लगातार हम प्रयास करते हुए उस काम में मजा लेने लगते हैं और इससे काम आसान भी होता चला जाता है और फिर जल्दी ही हम सफलता हासिल कर लेते हैं। और इस तरह की सफलता का स्वाद भी अनोखा होता है, जिससे परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम अपने साथ साथ कई लोगों को उसका फायदा भी पहुंचाते हैं और जिससे हम गौरवान्वित होते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास होता रहता है, जिससे किसी भी तरह की कुंठा और हीन भावना के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती है। और हम सब चाहते भी तो यही हैं, एक सफल संतुष्ट जीवन, सार्थक जीवन, जो अंततः सभी का लक्ष्य है।

यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।

0: आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है आगामी फसलों के लिए सामयिक सलाह और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमपी दुबे।
1: अभी इस माह में हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि वो दो फसलें ले सकते हैं। पहली फसल है तोरिया, कम दिन की फसल है, करीब करीब 85 से 90 दिन की फसल हमारे क्षेत्र में ये इसका आगमन हो चुका है। इसकी प्रजातियों का जहां तक सवाल है, जवाहर तोरिया 1, जवाहर तोरिया 2, संगम, भवानी, T9 ये उन्नत प्रजातियां हैं। बीज निगम से या अन्य संस्थाओं से जो बीज का व्यवसाय करते हैं, उन्नत बीज देती है, या बीज प्रमाणीकरण संस्था जो संभागीय कार्यालय सागर में है, उसे संपर्क करें और अच्छे बीज लेने की कोशिश करें। दूसरी फसल है मटर। इसकी खेती भी हमारे किसान भाई अगेती मटर के रूप में कर सकते हैं। खासकर सब्जी की मटर अर्किल एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत जल्दी फली देने लगती है। कम से कम 3 फलत लेके आप उसको अगले फसल गेहूं के रूप में आप ले सकते हैं। तो सितंबर है, इस माह में चना की फसल भी लेते हैं और अगेती चना की फसल करके वो बाजार में महंगे दामों पर चने बेच के, बूट बेच के उसका फायदा लेते हैं। सभी किसान भाइयों से अपेक्षा है, उनसे निवेदन है कि बगैर बीज उपचार के वो बीज की बोनी बिल्कुल ना करें। निश्चित रूप से अगर बीज उपचार करके आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं और उसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो अभी हमारे किसान भाइयों को इन दो फसलों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तिलहनी फसलों का जहां तक सवाल है, इसमें अभी सितंबर के महीने में हमारे किसान भाई तोरिया की खेती कर सकते हैं। अक्टूबर माह से वो सरसों राई की खेती शुद्ध रूप से कर सकते हैं या मिश्रित फसल के रूप में या अंतर्वर्ती फसल के रूप में कर सकते हैं। तो तोरिया, राई, सरसों, अलसी ये हमारी मुख्य तिलहनी फसल है क्षेत्र की। हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं, इनकी उन्नत प्रजातियां मिल सकती हैं जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 25 जिले हैं, उनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि महाविद्यालय हैं, इन सभी के पास प्रक्षेत्र हैं, फार्म हैं, हमारे यहाँ खेती होती है, उन्नत बीज बनाया जाता है। इनसे संपर्क करके हमारे किसान भाइयों को विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों की उपलब्धता ज्ञात हो सकेगी। खासकर हमारे यहाँ तो प्रजनक बीज मिलता है, ये साधारण तौर पर किसानों को नहीं दिया जाता। एक तो महंगा होता है, दूसरा इसकी जो श्रृंखला है बीज की वो खत्म हो जाती है, इसलिए किसान भाइयों को प्रजनक बीज नहीं दिया जाता। यदि थोड़ी बहुत मात्रा में किसी केंद्र पर जवाहर बीज है, जवाहर बीज प्रमाणित बीज के समकक्ष होता है, नाटेक का बीज होता है, तो ये विभिन्न केंद्रों से इसकी उपलब्धता जबलपुर से ज्ञात करके ले सकते हैं। मटर में आप हरी फसल के लिए अर्किल का चुनाव या और अन्य प्रजातियां हैं उनका भी आप चुनाव यथासंभव आप इसकी बोनी कर सकते हैं। अलसी का जो बीज है, उन्नत बीज, वो भी आपको जबलपुर से प्राप्त होगा। जहां तक उन्नत प्रजातियों का सवाल है, सागर अनुसंधान केंद्र से जवाहर अलसी 9, जवाहर अलसी 66, 67 और 73 ये असिंचित क्षेत्र के लिए निकाली है किसानों के लिए, और सिंचित खेती के लिए जवाहर अलसी 27 या जिसको सियोग नाम से जानते हैं, इनका बीज हमारे किसान भाई किसी अच्छी संस्थान से लेके इनका रकबा बढ़ा सकते हैं।
0: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। विषय था आगामी फसलों के लिए सामयिक सलाह और विशेषज्ञ थे डॉक्टर एमपी दुबे।

0: आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग

0: को किया खारिज। उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे, कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कहा कि पाकिस्तान को भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे और हमेशा रहेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने के तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान में राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा संगठन द्वारा इस अभियान के तहत जनसेवा, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कई प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन आज उज्जैन में भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश की जनता से सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की है।
1: जरूर जलाए। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 वर्ष को याद कर रहा है। सेवा और संकल्प की इस यात्रा ने भारत को नई दिशा, नई गति, नया आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने मध्य प्रदेश के हित में केंद्र सरकार निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करता हूं कि 17 सितंबर की शाम अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में एक आशीर्वाद का दीपक जरूर जरूर जलाएं।
0: इंदौर में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर इंदौर में 27 स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के साथ साथ धार, खंडवा, मंदसौर, अशोकनगर, पन्ना और इंदौरी तथा सभी जिलों में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। यह उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम बनाती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारत के नवोदय, नवचेतना और नवसंकल्प के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिवस हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और विश्व में प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश की धरती पर वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में 4 साल पहले आज ही के दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को देश की धरती पर बसाकर अंतर महाद्वीपीय चीता परियोजना का 17 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया था। इस परियोजना के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज कूनो के टिकटोली गेट पर वन विभाग के तत्वावधान में हजारों दीप रोशन किए जाएंगे। यह आयोजन सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। यह दीपोत्सव उस संकल्प और उपलब्धि का प्रतीक होगा जिसके माध्यम से भारत में विलुप्त हो चुके चीते फिर अपनी धरती पर विचरण कर रहे हैं। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज से विशेष यात्री सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा।

0: 24 दिन के इस अभियान में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी समस्याओं और शिकायतों के जल्द निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में भोपाल के विमानपत्तन निदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि
1: 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हम यात्री सेवा अभियान शुरू कर रहे हैं। एक में हम यात्रियों के प्रति हर दिन एक नया अभियान की सेवा है या उनकी ये वाईफाई है, ट्रॉलीज है, सिक्योरिटी मैटर्स है, तो उन सबको लेके प्रतिदिन एक नई एक्टिविटी करेंगे। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत रूप से जाकर फीडबैक लें अपने सुधार के लिए और जो भी और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकें। तो
0: मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित को पुनर्गठित कर अब मध्य प्रदेश वाटर एंड सैनिटेशन कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद भेजने की मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम एमपी वास्को और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्नत तकनीकी सुविधाएं, बेहतर कौशल और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्री परमार कल भोपाल स्थित मंत्रालय में जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शासी निकाय की 29वीं बैठक और साधारण सभा की 15वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। मंत्री परमार के अध्यक्षता में इस बैठक में महाविद्यालय के शैक्षणिक और संस्थागत उन्नयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भोज उद्यान में दोपहर 1 बजे जैविक खेती हाट बाजार का शुभारंभ किया जाएगा। खंडवा जिले में कलेक्टर ने आगामी गणेश उत्सव और नवदुर्गा पर्व की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मंदसौर जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 156 तीर्थयात्री कल विशेष ट्रेन के द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। सतना जिले की कृषि उपज मंडी प्रांगण में 19 सितंबर को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में विधायक शैलेंद्र जैन ने 70वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। झाबुआ जिले में रेडक्रॉस शाखा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पर 28 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। शाजापुर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जघन्य अपराधों तथा नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कल सम्पन्न हुई। और छतरपुर में वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा के तहत 22 से 24 सितंबर के बीच 10 टोलियां प्रवास करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे। कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हो चुके हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत तमाम सुनने वालों का, सभी को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इंतकाम फिल्म के गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। फरमाइश आप सभी की गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल और निशा, ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली है। एक और व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई ग्राम पीपर लोट सरगांव छत्तीसगढ़ से, और इसे भेजने वाले हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। एमएलबी रोड ग्वालियर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना की। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं इंतकाम फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

जानी दुश्मन, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश है आप सभी की, सदर बाजार कुरावली से ये फरमाइश में मिली अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा की। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने ये फरमाइश लिख भेजी है। गांव उगाला जिला हरियाणा से ये व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी। प्रज्ञानंद दिवांगन, नंदनी दिवांगन, प्रकाश दिवांगन, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी दिवांगन ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत, आवाज है लता मंगेशकर की। इसके पहले आपने सुना इंतकाम फिल्म का गीत जिसके गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं जानी दुश्मन इस फिल्म का गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
6: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
7: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
8: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश धरती फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का। फरमाइश आप सभी की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू की। बुलंद शहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रसिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह और MS अब्बासी ने ये फरमाइश लिख भेजी है। यमुना पुरम बुलंद शहर से ये फरमाइश है धीरेंद्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा शौर्या और मून सोलंकी की। कस्बा गुन्नौर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान फरहीन, फारिया और ताहिरा की। और ये फरमाइश है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीराम शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं धरती फिल्म का गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

और आइए मन चाहे गीतों के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं वापस फिल्म का गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, गीतकार मजरू, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश है आप सभी की। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा प्रीतिशा संधु और मैक्स की। पश्चिम से भूम चाईबासा झारखंड से ये फरमाइश है शिवा गोप

पिता जाधव, आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम वापस, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

वापस फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाही गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सईद राही की लिखे इस गीत के साथ, स्वर और संगीत महेंद्र कपूर का एल्बम दिल की आवाज़।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: अंतराल के बाद संगीत सरिता कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत। संगीत है परेश नरेश कामत का, एल्बम है सैया।
2: यार मेरा

आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं राजेश जौहरी की रचना। संगीत है बिद्दू का, आवाज है शान की, एल्बम है नौजवान।

0: इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन

0: का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के

0: लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
2: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट जाने शुरू हो चुके हैं।
1: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गणेश वंदना। कलाकार हैं वीर सिंह बुंदेला वीर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये युगल गीत। कलाकार हैं सुशीला देवी और रामनाथ अहिरवार।

लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 8:30 होने को है अगला प्रसारण, थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 24 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जमशेदपुर झारखंड से सुमित कुमार मिश्रा और रिंकी राय। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी की दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी की रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

कुछ आवाजें केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं होती, वो भीतर उतरती हैं और मन के किसी शांत कोने में दीपक की तरह जलती रहती हैं। कुछ स्वर केवल संगीत नहीं होते, वो प्रार्थना बनकर उठते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। कर्नाटक संगीत के आकाश में गूंजते एक ऐसे ही स्वर का नाम है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एक ऐसा स्वर जिसमें भक्ति की निर्मलता थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्पंदन था। जैसे भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूकर वातावरण में पवित्र उजास भर देती है, वैसे ही एमएस सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकले स्वर सुनने वालों के अंतर मन को पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। उनके लिए राग केवल सुरों का अनुशासन नहीं था, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था और गायन केवल कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति। कर्नाटक संगीत की इस महान साधिका ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की सीमाओं को पार किया और भारतीय संगीत की गरिमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। वो केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवतावादी चेतना की सजीव प्रतीक थी। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त अपनी गंधर्व वाणी को कभी व्यावसायिक लिप्सा का साधन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगीत को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, समाज कल्याण के माध्यम और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर मदुरई में हुआ। उनकी माताजी का नाम शनमुखा वदिवु था। वो एक प्रतिष्ठित और निपुण वीणा वादक थीं। इस तरह सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम मदुरई शनमुखा वदिवु सुबुलक्ष्मी हुआ। उनके पिता सुब्रमण्य अय्यर एक वकील थे। एमएस सुबुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कलात्मक विकास पर उनकी माताजी और मदुरई के संगीतमय वातावरण की अमिट छाप पड़ी। उनका बचपन मीनाक्षी मंदिर की गलियों में नादस्वरम की धुनों, मंदिरों के भजनों और उनकी माताजी द्वारा बजाई जाने वाली वीणा की झनकार के मध्य व्यतीत हुआ। संगीत उन्हें किसी औपचारिक कक्षा से अधिक अपनी पारिवारिक परंपरा और घर के वातावरण से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी माताजी ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और बहुत कम उम्र में उन्हें वीणा और कर्नाटक गायकी का कठोर अभ्यास कराना आरंभ कर दिया था। उन्होंने संगीत के पितामह कहे जाने वाले सीमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक गायकी के गूढ़ तत्वों को ग्रहण किया। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक थी कि उन्होंने केवल कर्नाटक संगीत तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंडित नारायण राव व्यास से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां भी सीखीं तथा भारत के संगीत जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित हो गईं।

एमएस सुबोलक्ष्मी ने बहुत कम उम्र में ही मंचीय प्रस्तुतियां आरंभ कर दी थी और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ और आम श्रोता सभी उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी विशेषता थी कि वो स्वर, ताल और लय की पूर्ण शुद्धता के साथ कठिन रागों को गाया करती थीं। यही कारण है कि सुनने वालों को ये अंदाजा हो चुका था कि एक महान गायिका का उदय हो चुका है। इस तरह उनकी रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मलयाली से लेकर पंजाबी तक भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। सन 1940 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी पत्रकार और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के निकट सहयोगी के सदाशिवम के साथ संपन्न हुआ। सदाशिवम के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद एमएस सुबोलक्ष्मी के जीवन को एक नया वातावरण मिला। सदाशिवम केवल उनके जीवन साथी नहीं थे बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अभियानों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। इस विवाह ने एमएस सुबोलक्ष्मी को सीधे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी के विचारों और तत्कालीन नेताओं के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिकारों और शीर्ष कलाकारों की आवाजाही का केंद्र बन गया। एक कलाकार के रूप में एमएस सुबोलक्ष्मी की सबसे बड़ी विशेषता थी श्रुति शुद्धम, यानी स्वर की निरपेक्ष शुद्धता, और साहित्य भाव यानी शब्दों के भाव की अंतरात्मा से अभिव्यक्ति। उनके गायन में अलौकिक तन्मयता थी। वो सीधे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाती थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कठिन रचनाओं को क्लिष्टता के बंधन से मुक्त कर उसे आम जनमानस के लिए भक्ति का सुगम मार्ग बना दिया।

स्वर माधुर्य ने पूरे देश को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके गाये भक्ति संगीत की सूची में ऐसी कई रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। उनके द्वारा किया गया विष्णु सहस्र नाम का सस्वर पाठ केवल एक संगीतमय प्रस्तुति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी आवाज में वेंकटेश सुप्रभातम भी एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।

एमएस सुबुलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के महान संत कवि अन्नमाचार्य की रचनाओं को गाकर उसे व्यापक लोकप्रियता दिलाई और जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य रचित वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण स्रोत भज गोविंदम को एमएस सुबुलक्ष्मी ने स्वर और भाव प्रदान किया तो जैसे हर मन इस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराई और पश्चिमी दुनिया को भारतीय संगीत के आध्यात्मिक और शास्त्रीय वैविध्य से परिचित करवाया। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में सबसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण 23 अक्टूबर सन 1966 का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी दिव्य प्रस्तुति दी। इस सभा में गाने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थी। ये वो दौर था जब पूरा विश्व शीत युद्ध के तनाव से गुजर रहा था। इस कार्यक्रम में अपनी तमाम प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने विशेष प्रार्थना गाई, मैत्रीं भजता। ये केवल एक गीत नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए भारत का शाश्वत शांति संदेश था, जिसमें सबके हृदय को जीतने वाले मैत्री भाव की स्थापना का आह्वान था।

एमएस सुबुलक्ष्मी का नाम उन चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल है जिन्होंने अपनी कला से अर्जित अधिकांश धन समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 चैरिटी कॉन्सर्ट किए। वो एक विलक्षण कलाकार थी। यही कारण है कि उनके समय के दिग्गज कलाकारों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा। किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का आठवां सुर कहा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। महात्मा गांधी भी उनके बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो इस दिन एमएस सुबुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन हरि तुम हरो जन की भीड़ सुनना चाहते हैं। जब ये संदेश चेन्नई पहुंचा तो एमएस सुबुलक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक संदेश भिजवाया कि उन्हें ये भजन पूरी तरह याद नहीं है और इतनी जल्दी इसे गाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि यदि वो इसे केवल बोल भी दें तो भी वो मुझे किसी अन्य के गायन से अधिक शांति और आनंद देगा। गांधी जी के इन शब्दों को सुनकर एमएस सुबुलक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत ये भजन सीखा और रिकॉर्ड किया और 2 अक्टूबर की सुबह ये भजन दिल्ली पहुंचाया गया और प्रार्थना सभा में बजा। लेकिन ये भी कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने इस दुखद समाचार की सूचना देने के तुरंत बाद एमएस सुबुलक्ष्मी द्वारा गाया गया यही भजन प्रसारित किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला कलाकार हैं। वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहली संगीतज्ञ हैं। संगीत जगत को अपने अनगिनत गीतों की अनमोल विरासत सौंपकर 11 दिसंबर सन 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण स्वर साधिका को।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वहीं आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने निर्माण और इससे जुड़े अन्य कार्यों में लगे देशभर के कारीगरों और कुशल श्रमिकों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है।

आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और चित्रलोक कार्यक्रम चल रहा है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अजय अतुल का गाया ये गीत फिल्म धड़क से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।

लैला मजनू इस फिल्म का गीत अब सुनिए अरिजीत सिंह और जोनिटा गांधी की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना है और निलाद्री कुमार ने इसे संगीत से सजाया है।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिवर माउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। साथियों, हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का ही वो दिन है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सही दवा, सही उपचार, स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर संवाद रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर मरीज का महत्वपूर्ण अधिकार है। और आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। ड्रीम गर्ल इस फिल्म से मीट ब्रोज ने इसे गाया है, साथ दिया है अल्तमश फरीदी ने, शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, मीट ब्रोज का संगीत।

0: मलंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन की आवाज में। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा था, द फ्यूजन प्रोजेक्ट म्यूजिक।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: चित्रों कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती से, और अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावां बैठूं।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मेडल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कुल 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है जब हसरत जयपुरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओ को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पायलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अम्बेडकर

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल।

पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है, दोस्तों तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब शो को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध।

0: आगा हशर कश्मीरी रेडियो नाटक रूपांतरण
1: सुन रहे थे नाटक सफेद खून। इसके लेखक थे आगा हशर कश्मीरी, प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। यह आकाशवाणी भोपाल है। अब आप सुनेंगे सागर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। सेवा और समर्पण से जुड़े आयोजनों में आम जनता भी सहभागिता कर रही है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की बीते दिनों खुद समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत निर्धारित सभी गतिविधियां व्यापक जनभागीदारी और बेहतर विभागीय समन्वय के साथ समय सीमा में संपन्न कराई जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। बीते दिनों सेवा संकल्प अभियान को लेकर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से कार्यक्रमों पर चर्चा की। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के लोक सेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होना सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा का अवसर है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चला रही है। पिछले दिनों सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई दुखद घटना के पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अवैध जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु के प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की। मंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहरीली शराब से हुई मौतों की घटना पर दुख जताया और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। श्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। इसमें धारा 49 और 304 जोड़ते हुए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है। श्री चौहान ने कहा कि जो भी इस प्रकार की घटना में लिप्त है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं जिले के मौसम की। सागर जिले में इस बार अभी तक पर्याप्त बारिश हो चुकी है। जिले में अतिवर्षा से कुछ स्थानों पर फसलें प्रभावित हुई हैं। अधिक बारिश से कुछ क्षेत्रों में उड़द की फसल को हुए नुकसान को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और कृषि विभाग के मैदानी अमले को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उड़द फसल की क्षति का तत्काल और पारदर्शिता के साथ भौतिक सत्यापन शुरू कराएं। पिछले दिनों प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में खुरई में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। खुरई स्थित पार्क में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण भी इस मौके पर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि महापुरुषों के विचार और उनका जीवन समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहता है। इस अवसर पर क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिसमें 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खुरई का नवीन नगर पालिका भवन, मिडवे रिट्रीट तथा गुरु तेग बहादुर चौराहे के उन्नयन तथा विकास कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और सांसद लता वानखेड़े भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं युवाओं से जुड़ी गतिविधियों की। एनसीसी सागर के बालिका बटालियन के तत्वावधान और कैंप कमांडेंट कर्नल सुजीत देशमुख के नेतृत्व में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीते दिनों सिरोजा स्थित स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिसर में 4 सितंबर से 13 सितंबर के बीच किया गया। इस शिविर में लगभग 400 बालक एवं बालिका कैडेट्स की सहभागिता रही। वहीं विधिक जागरूकता के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष एमके शर्मा के मार्गदर्शन और विशेष न्यायाधीश तथा समन्वयक नेशनल लोक अदालत सागर विवेक सिंह रघुवंशी के निर्देशन में जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर के एडीआर सेंटर भवन के सभागार में किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल 2,333 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। सागर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं, फोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: भैया रो फोन करें लोकगीत सुने। एक कार्यक्रम में आपको खूबे खूब स्वागत है। हम हैं आपके संगे जय शेखर और करत हैं भैया आपसे राम राम और लेत हैं आपको जो पहलो फोन। फोन करें लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत है आपको। अपनो नाम बताओ।
1: नाम तो कल्याण सिंह यादव पाली, बांदी के पास में है फूलदान पे गाँव।
0: हाँ तो कल्याण भैया
1: जी
0: हमें बताओ क्या कर रहे हो पाली में?
1: कछु नहीं सर, खेती किसानी है अपने लगा। हाँ फसल सोयाबीन बा और सर।
0: हाँ हाँ
1: वो उर्दा बाए हैं। अरे सर कछु नहीं पानी गिर गया, बहुत पानी, ये साल बरसात हो गई सर, बढ़ गए हैं सर सोयाबीन।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो भैया हमें जा बताओ कि अगर हम आपसे अटका पूछें तो अटका बताओ।
1: अटका बताए सर हम
0: तो हमें भैया जा बताओ कि अब पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
1: सर वो अपन भोजन करे थे। हाँ। तो जो हाथ को वो भोजन बन गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: लोकगीत तो सर हमें भगवान सिंह यादव को सुनवा।
0: ठीक है भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, भगवान सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: फोन करें लोक गीत सुने में स्वागत है आपको।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना नाम बताओ।
0: ग्राम लक्ष्मण परा जिला टीकमगढ़ से अखिलेश सेन।
1: भैया क्या कर रहे हो आप?
0: सर बस अभी तो घर पे ही हैं सर, दिल्ली में रहते तो भैया है, बस यहाँ ही अभी तो घर पे ही खेती बाड़ी का काम चल रहा है अभी तो।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, अब हम भैया आपसे अटका पूछ ले।
0: जी सर अटका बताइए।
1: अटका कह रहा है, पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: पांच पंच हैं बड़े खजूर,
1: घने खजूर।
0: अच्छा, घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
1: हाँ,
0: संकेत थोड़ा बहुत।
1: संकेत भैया जो अपने साथ ही जुड़ी भाई बात है।
0: रास्ता तो नहीं जो।
1: नहीं भैया,
0: समझ में नहीं आ रहा।
1: चलो भैया बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
0: सर आप इंद्रपाल विश्वकर्मा का लोकगीत सुनवा दीजिए।
1: चलो भैया हम आपको सुनवा रहे हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा को गाओ भाओ जो लोकगीत।
0: हाँ

0: हेलो,
1: फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
0: हम बोल रहे हैं अमित तिवारी, कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से।
1: भैया अमित, अपने बारे में बताओ, कछु के का कर रहे हो आप होते?
0: बस हम पूजा पाठ से जुड़े रहे हैं, पूजा पाठ करत हैंगे। और मतलब
1: आपके देखो मौसम कैसा चल रहा हो बे?
0: हमारे तो बराबर मौसम बारिश हो रही है, और ये मान के चलो कि सब लोग इंतजार में है कि जी अच्छी धूप खिले, क्योंकि चौप हमारे यहाँ जो फसल है इस वक्त पूरी खराब हो चुकी है।
1: चलो भैया, हम उम्मीद करें कि आप कहते मौसम खुल जाए, लेकिन हमारे कहते बरस जाए। जय है भैया प्रकृति को, एक हो अपन प्रकृति कहते हैं कि कहूँ बारिश है और कहूँ कम है बारिश, तो हमारे कहते भैया हम चाहते कि अभी और बारिश हो जाए। तो अमित भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
0: हाँ।

0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अटका क्या रहोगे, पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: पांच आपको जी अटका है ये तो हमारा ना झटका से प्रदान कर दे साहब, हम तो एकदम अटका भी होते ही पेड़ा स्रोत होते हैं जी मान के चलो सर।
1: बिल्कुल भैया, तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं आपको।
0: बस लोकगीत आप सुनवा दीजिए साहब, चंद भूषण पाठक की आवाज में कोई भी लोकगीत सुनवा दीजिए आप।
1: चलो भैया ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: फोन करें लोक गीत सुने।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, अपना नाम बताओ।
0: सर हम बोला राजा राम कुशवाहा।
1: राजा राम भैया कहाँ से बोल रहे हो?
0: सर काठिया बड़ा गांव से बोल रहा था।
1: तो राजा राम भैया कछु अपने सरका खेड़ा के गांव के बारे में बताओ और अपने बारे में बताओ।
0: अबे तो सब कछु नहीं हुआ, बारिश हो रही है, आज धूप भी निकली। देखो भगवान की तो भगवान की देन है, सुबह तो आज तो सड़क है। जो कछु को सूख गई थी अभी तो सड़ गई।
1: चलो भैया, हम जय उम्मीद करें कि आपको खेती किसानी से लाभ मिले और कोई भी प्रकार की हानि ना हो, और जो उनसे आपके पूरा परिवार जुड़े है, पूरा देश जुड़े है भैया, एक ऐसा काम धंधो है जो तो बड़े अच्छे से चले, प्रकृति की मार भी ना पड़े।
0: सब पानी की मार देखो अब मिल जावे तो बड़ी बढ़िया है। पानी की नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है।
1: चलो भैया, अच्छी बात है कि सर का खेड़ा के आदमियों को पानी की कोई कमी नहीं है।
0: बोले चलो तो एक पेड़ माँ के नाम।
1: हाँ
0: तो सब हमारे बिल्कुल भी एक भी गाय नहीं बचो के जिसने पेड़ नहीं लगाए हो।
1: अरे भैया जहाँ तो सबसे अच्छी बात है। हम तो आदर्श गाँव मान है आपके लाने के भैया, इतनो ध्यान रखो आप लोगों ने प्रकृति के लाने, एक पुण्य को काम कर दो आपने।
0: हमारा तो सब आपको पता ही है, मतलब आपकी मतलब हमारी बात दो चार भी आपसे भाई।
1: हाँ।
0: सुरेश चंद्र तिवारी को सुनवा दियो कोई बढ़िया। तो
1: सुरेश चंद्र तिवारी को राजा राम भैया अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: एक बार बताइए,
1: पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: जी दांत आपके नहीं
1: है
0: तो सब बन नहीं।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश चंद्र तिवारी को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: हेलो, नमस्कार।
4: नमस्कार, फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको।
3: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस्तन वंडा बेनेशन एक्समेंट को चाय वाले बोल रहे सर, कैसे हो
4: आप? हम बढ़िया है भैया, आप अपनी बताओ।
3: बात तो पानी चल रहा, पानी से है परेशान
4: भैया। परेशान अपन को नहीं होने है, कोई भी चीज से परेशान नहीं होने है।
3: फसलें फलियां मलियां गिरन लगी
4: है। हाँ भैया, लेकिन देखो तो अभी कुछ दिन तक तो पानी ही नहीं गिर रहा। तो
3: हाँ, अब गिरो तो खतरनाक गिरो।
4: हाँ तो लक्ष्मण भैया, बरसात का मौसम चल रहा है, खूब सावधानी बरतने हैं अपन के लाने।
3: बस तो आसपास जो कचरा मचड़ा जो नाली माली का पानी रहता है उसको निकाल लेना, आयल मालदार ना तो उससे मच्छर से बचा जाए।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
3: हाँ सर,
4: अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
3: हम जाएं दूर, जो हमने सुनो ही नहीं है, समझ में नहीं आ रही।
4: चलो भैया कोई बात नहीं, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे।
3: राजू पटेल को सुनवा दीजिए।
4: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, राजू पटेल को गाओ भाओ जो लोकगीत।
5: अरे मुनि के शोभे से हाथ लाए धनुष बाण
6: भैया,
5: अरे मुनि के